हम तेरी ही इबादत करते हैं, लेकिन तेरी इबादत के लिए हमें तेरी मदद की ज़रूरत है, तेरी सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल ना हो, मुमकिन है कि इंसान हकीकी माना में इन रियल सेंस इबादत गुजार नहीं बन सकता। फिर पैगंबर इस्लाम ने 5 बातों की सिफारिश की है मौलाए कायनात को, इंशाअल्लाह हम सब लोग उन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अमल उला फसेदक, पहली बात ए अली, सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में अपनाओ। ट्रूथफुलनेस तुम्हारी पहचान होनी चाहिए, इसलिए कि तमाम इबादतों की बुनियाद, द फाउंडेशन ऑफ प्रेयर्स, द फाउंडेशन ऑफ अखलाकी ज़िंदगी, सच्चाई है। अगर सच्चाई ना हो, ट्रूथफुलनेस ना हो, ना इंसान की इबादत कबूल की जाती है और ना ही इंसान के कि इबा अखलाकियात को कबूल किया जाता। अखलाकियात की बुनियाद, फाउंडेशन सच्चाई पर है। सच्चाई सिर्फ ये नहीं कि इंसान बातों में सच्चा हो, मुमकिन है कोई इंसान बातों में, गुफ्तगू में, कन्वर्जेशंस में वो ट्रुथफुल हो, लेकिन ये सच्चाई आम सिफत है जो हर जगह हमें नज़र आनी चाहिए। नीयत में सच्चाई, वादे और प्रॉमिसेस में सच्चाई, मुआमलात में सच्चाई, तिजारत में, गवाही में, रिश्तों में, और सबसे बड़ी बात ये कि इंसान अपने आप से भी सच बोले और एक सच्ची ज़िंदगी गुजारे। हमारे यहाँ कहा जाता है जब खाने की बात आती है, दस्तरखान पर बैठते हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया मत खाओ, कहते हैं कि आज हमारा चीटिंग डे है। चीटिंग डे तो हमारी ज़िंदगी में है, क्या कभी सच्चाई का दिन भी हमारी ज़िंदगी में है? कभी इंसान कहे नहीं आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि आज हमारे सच्चाई का दिन है। कितना जल्दी चीटिंग डे को अपना लेता है, लेकिन कितना दुश्वार है कि इंसान सच्चाई का दिन मनाए और सच्चाई का एक दिन मुअय्यन करे, वादा करे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, आज हमारी ज़बान से एक हर्फ भी झूठ नहीं निकलेगा। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। फला तुख्रिजन्न मिन फीका कज़बतन अबदा, तुम्हारी ज़बान से कभी भी एक लफ्ज़ भी झूठ न निकले, एक लफ्ज़ भी तुम्हारी ज़बान से झूठ न निकले, तब जाकर एक इंसान की अखलाकी ज़िंदगी कंप्लीट होती है। ख़ुसूसी तौर पर आज के इस दौर में सच्चाई बहुत ज़रूरी है। जहाँ झूठी खबरें, जहाँ पर तस्वीर झूठी हैं, खबरें झूठी हैं, स्लैंडरिंग का दौर है, सोशल मीडिया पर बग़ैर तहकीक के, बग़ैर वेरिफिकेशन के चीज़ें फैलाई जा रही हैं, किसी भी बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा हो, ऐसे ज़माने में सच्चाई का अपनाना मुश्किल भी है और इंसान के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। किसी ने अच्छा जुमला का, सच्चाई के रास्ते पर चलने का बड़ा मरहला ये है कि कभी कभार इस रास्ते पर इंसान अकेला रह जाता है, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होता, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। बहरहाल कोई हो या ना हो, इंसान को सच बोलना है और सच्चाई के रास्ते पर चलना है। दूसरी सिफारिश पैगंबर इस्लाम की, वसानिया अलवरा वला तजतरे अन खिया अला खियानतिन आबादा। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया वरा इख्तियार करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। जो मिसाल दी है पैगंबर इस्लाम ने इस वरा की, ये कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में खयानत को ना अपनाना, कभी भी तो अपनी ज़िंदगी में किसी के बातों में खयानत न करना, किसी के माल में खयानत न करना। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम ट्रस्टवर्थी से जोड़ा जाए, तुम ट्रस्टवर्थी कहलाओ समाज में, तब जाकर तुम्हारी ज़िंदगी अखलाकी कंप्लीट होती है। इसलिए असल तकवा ये है कि इंसान अमानतदार बने, अमीन बने। ये नहीं कि सिर्फ इंसान माल में अमीन बने, मुमकिन है कोई इंसान माल में अमीन हो, वो प्रोटेक्ट करता हो माल को, धोखा नहीं देता, किसी को डिसीव नहीं करता, लेकिन बातों में अमीन ना हो। मैंने रात की तकरीर में कहा था असरार को छुपा के रखना बहुत बड़ा काम है, बड़ी हिम्मत चाहिए होता है इंसान के लिए कि वो दिल में उन बातों को छुपा के रखे जिन बातों को रास के तौर पर रखा गया है। कभी कभार इंसान माल को बचा ले सकता है, लेकिन बातों को आश्कार कर देता है, उस वक्त तक इंसान को सेटिस्फिकेशन नहीं मिलती जब तक वो ओपन नहीं कर देता, जब तक वो

बयान नहीं कर देता। कुछ लोग कहते हैं हमें बेचैनी हो रही है। किस बात की बेचैनी हो रही है? कि रास का पता चल गया है, जब तक वो बताएंगे नहीं सुकून नहीं मिलेगा। हर आदमी को ब्रेकिंग न्यूज़ देनी होती है, हर आदमी को फौरन खबर पहुंचानी होती है, ताकि वो सच भी हो या झूठ भी हो। इंसान अमीन बनने के लिए तैयार नहीं होता है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया वला तजतरे अला खयानतिन, अब अदा हिम्मत न करना कभी भी खयानत में। हिम्मत करना हो सच बोलने में अपनी हिम्मत दिखाओ, करेज दिखाओ, खयानत में कभी अपनी हिम्मत न दिखाना। और तीसरी चीज वसालिसत अल खौफ मिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल का अन्नका तरा, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ तुम्हारे दिल में होना चाहिए। अल्लाह का डर, जिसे हम तकवा बार बार सिफारिश करते हैं, तकवा इलाही की, ये अल्लाह का डर इंसान के अंदर होना चाहिए। अल्लाह का डर कहाँ नज़र आना चाहिए? मुमकिन है लोगों के दरमियान इंसान डरे भी और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करे, वहाँ अल्लाह का डर होना चाहिए जहाँ कोई इंसान को देखने वाला ना हो। कहीं इंसान को देखने वाला और मुशाहिदा करने वाला ना हो, वहाँ पर इंसान को अल्लाह का डर होना चाहिए। का अन्न का तरा, दो मरहले हैं। एक मरहला ये कि हम अल्लाह के वजूद का एहसास करें, और ये कि अल्लाह भी हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, नो डाउट। ये तो ये हमारा अकीदा है, ये हमारा फेथ है, तौहीद का पार्ट ऑफ द तौहीद है। अल्लाह बसीर है, वो हर हाल में हमें देखेगा, हर काम को हमारे देखेगा, हत्ता हमारे इंटेंशंस को देखेगा, नहीं हमारे इरादे जो हमारे दिल में गुजरते हैं उनको भी अल्लाह देख भी लेता है, पढ़ भी लेता है। अल्लाह बसीर है जी, इसमें कोई शक नहीं होने चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। लेकिन इससे बड़ा मरहला जो ईमान का है, जो फेथ का है, वो ये कि हम भी अल्लाह के वजूद का एहसास करें। हम कहें हम भी हमारी ज़िंदगी में वो कि अल्लाह हमें देख रहा है, ये यकीन की आखिरी मंजिल है। का अन्ना का तरा, गोया तू अल्लाह को देख रहा है। कामों से पहले, काम करते हुए, कामों के बाद इंसान अल्लाह तबारक व ताला के वजूद का एहसास करे। एक सेंस इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम अल्लाह का, अल्लाह के वजूद का अपनी ज़िंदगी में एहसास करें। चौथी चीज पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं वर्राबिअतु कसरतुल बुका मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाना, बहुत रोना जी। कितना हमें हंसना आता है, कितना हम रोते हैं। रोना किस बात पर? अजमत परवरदिगार का एहसास करके इंसान के आंखों में आंसू आ जाए। कभी कभार जब हम मुलाकात के लिए जाते हैं ज़ियारतों पर, उलमाए कराम से जाया कीजिएगा, ज़ियारत पर जाते हैं तो एक उलमा का दीदार भी हो, उलमा से मुलाकात हो। जब बड़े उलमा परहेजगार उलमा से मुलाकात होती है, उनके सामने बंदा बैठता है तो बे इख्तियार आँख से आंसू निकल पड़ते हैं। ये आंसू इसलिए नहीं कि वो डरा रहे हैं, आंसू इस वजह से कि एक हैबत होती है उनके चेहरे पर, एक तकवा का नूर होता है उनके चेहरे पर। जब बंदा देखता है तो उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अजमत का खौफ होना चाहिए। अगर हमें कहा जाए कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हुए हो, जब हमसे कहा जाए कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो गोया तुम अल्लाह के सामने खड़े हुए हो, जाहिर सी बात है अजमत उलमा कहाँ और अल्लाह तबारक व ताला की अजमत कहाँ है। अगर थोड़ी देर के लिए बंदा फील करे तो उसके आंख से आंसू निकल पड़ेंगे। हम कहाँ और उसने हमें बुलाया है, मैं गुनाहगार, उसने मुझे इनवाइट किया है, उसने मुझे कहा है कि आ मेरे बंदे, मेरे मुसल्ले पर आ, मुसल्ले पर खड़ा हो जा, मुझे पुकार, मैं तेरी आवाज़ को सुनता हूँ। सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। क्या ये हजमत परवरदिगार, क्या ये अल्लाह तबारक व तआला की माइटीनेस इंसान को रोने पर मजबूर नहीं करेगी? अजमत का गिरिया, शौक का गिरिया, हाँ कभी कभार डर भी होता है, इतने गुनाह हो गए फिर भी वो मुझे बुला रहा है। हिसाब किताब का डर, अकाउंटेबिलिटी का डर, कयामत में खड़े होने का डर, पूछे जाने का डर, अगर ये डर इंसान की ज़िंदगी में आ जाए तो आंसू कभी इंसान की आँखों से रुकेंगे नहीं। चौथे इमाम जब खाना काबा के करीब पहुँचे, अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए

घबरा रहे थे। ये हमारे पास रिवायतें हैं, हदीस हैं, हमारे लिए सबक है, नसीहत है। मौला के आंखों से आंसू निकल पड़ते थे, मौला कायनात के बदन, मौला इमाम सज्जाद के बदन में लर्जा आ जाता था जब आपके असहाब पूछते, मौला ये तो खाना है काबा है, अल्लाह ने हमें बुलाया है, लब्बैक कहते हुए आप इतना काम क्यों रहे हैं, आप इतना गिरिया क्यों कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया मैं तो लब्बैक कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो वहाँ से आवाज़ आए ला लब्बैक, तेरा आना हमें कबूल नहीं है। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह कहे तेरा आना मुझे कबूल नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की जीनत, सैयदुस साजिदीन, सजदा गुजारों के सरदार कह रहे हैं। हमें क्या सबक मिलना चाहिए? जब भी अल्लाह का नाम हमारे जहन में आए, हमारे दिल से गुजरे, हमारी जबान पर आए, तो खशियत परवरदिगार, खौफ परवरदिगार के मारे हमारे आंखों से आंसू निकलना चाहिए। वल खामिसा तो बदलो मालिका व दमे का दून दीनिक, कभी कभार माल का खर्च करना, माल का कमाना और माल का खर्च करना। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं तुम अपने माल को खर्च करो, किस लिए खर्च करो, कहां पर खर्च करो। इंसान कहां खर्च करता है, कहां खर्च करना चाहता है बंदा, इसके लिए भी अक्ल चाहिए, इसके लिए भी सही सोच चाहिए। कभी कभार एक गलत काम में पैसा इतना बंदा लुटा देता है जिसका उसे कोई रिटर्न नहीं मिलता, कोई एवज नहीं मिलता। जी अहलक तो मालन लुबादा, कभी कभार बंदा कहता है परवरदिगार मैंने जितना भी पैसा खर्च किया बेकार में गया, इन वेन, कोई मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मैंने खर्च कर दिया, बहुत सारा पैसा मैंने लुटाया। तो आवाज़ कुदरत आएगी कहाँ लुटाया, कहाँ खर्च किया। कभी कभार शो ऑफ के लिए तो खर्च नहीं कर दिया, रियाकारी के लिए तो खर्च नहीं कर दिया, गलत रास्ते में तो खर्च नहीं कर दिया। बास कुफार कुरैश में लोग होते थे पैगंबर इस्लाम के मिशन को रोकने के लिए बहुत सारा माल खर्च कर देते थे, बहुत सारा माल खर्च कर दिया। उसने कहा कि मेरा मैंने बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन पैसा खर्च करने के बाद रिटर्न मुझे कुछ भी नहीं मिला। आवाज़ कुदरत आएगी कहाँ से मिलेगा, इसलिए कि जहाँ तुझे कहा गया था खर्च करने के लिए वहाँ तूने खर्च नहीं किया, वहां तूने स्पेंड नहीं किया। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं माल खर्च करने का बेहतरीन रास्ता बदलो माले का व दमे का दून दीनिक, अपने दीन के लिए माल भी खर्च करना, अपने दीन के लिए अपना खून भी देना। अगर दीन के लिए ना हो, लोगों की फलाह बहबूदी के लिए ना हो, लोगों की तरक्की के लिए ना हो, वो खर्च खर्च नहीं कहलाएगा, इंसान ज़रूर पछताएगा। कभी कभार दीन के लिए भी खर्च करता है बंदा, पोजीशन के लिए दीन के लिए खर्च करता है, रियाकारी के लिए, वहाँ भी परवरदिगार आलम कहता कि ये काम भी तुम्हारे फ़ायदे में पहुँचने वाला नहीं है। बदलो मालिका वो दीन है। कभी कभार दीन हमसे मदद मांगता है, माली मदद माल देना होगा। कभी दीन हमसे वक्त मांगता है, वक्त देना होगा। कभी दीन हमसे हमारा कंफर्ट मांगता है, हमें कंफर्ट को कुर्बान करना पड़ेगा। कभी दीन हमसे हमारी ख्वाहिशात मांगता है, हमारे डिजायर्स और ख्वाहिशात को हमें कुर्बान करना पड़ेगा। और कभी दीन हमसे हमारी जान मांगेगा, तो हमें जान देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। दीन के लिए हमें सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। इसके लिए बेहतरीन रोल मॉडल, बेहतरीन उस्वा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है करबला के दश्त में, जहां आपने माल भी कुर्बान कर दिया, अहलो आयाल को कुर्बान किया, असहाब को कुर्बान कर दिया। जब वक्त पहुंचा असर आशूर, इमाम ने अपनी जान भी दीन के लिए कुर्बान करके कहा रिदन बेकदा ही वो तस्लीमन ले अमरे। पैगंबर इस्लाम ने इमाम अली से खिताब करके एक बेहतरीन इंसान बनने के उसूल बताए, जिस उसूल में जबान सच्ची हो, हाथ अमानतदार हो, दिल में खुदा का डर हो, आंख में आंसू हो, और ज़िंदगी में कुर्बानी का जज्बाया पाया जाता हो। इन्ना अहसनल हदीथ व अबलगल मौइदा किताबुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم.

घरों को नुकसान पहुंच सकता है। दो काम हमारे होनी चाहिए, एक उस हादसे से पहले हमारे लिए प्रिपरेशन ज़रूरी है, तैयारी ज़रूरी है। हमारे कुछ कम्युनिटी मेंबर्स के लिए जो रोज़ाना मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उनके लिए तो कुछ मदद की ज़रूरत, ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए भी अगर हम कर सकते हैं के कर सकते हैं, उनका ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ काम गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट करेगी, कुछ काम हमारे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट और वेलफेयर सपोर्ट, उनके ग़िज़ा का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम, उनके लिबास का इंतजाम, उनके दवाइयों का इंतजाम, खास तौर पर प्रिपरेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे EI नैनो रेन्स का जो खबर दी जा रही है, बहुत जरूरी एक काम हमारे लिए करना है, मेंटली प्रिपेयर हों, फाइनेंशियली प्रिपेयर हों, और दूसरों की मदद करने का ख्याल हमारे दिलो दिमाग में रहे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करेगा। सोच हो तो अल्लाह तबारक व तआला उस सोच को कंप्लीट कर देता है। घबराइएगा नहीं, मैं डराना नहीं चाहता आपको, लेकिन है ये प्रिडिक्शन तो प्रिडिक्शन है, हो सकता है। दुआ करें हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सहीफ़ सज्जादिया की दुआ नंबर 19, कभी बारिश नहीं होती है तो हम बारिश की दुआ करते हैं, नहीं बारिश नहीं होती है, रेन्स ना हो तो हम दुआ करते हैं, परवरदिगार हमें बारिश चाहिए। चौथे इमाम ने दोनों चीज़ों को जमा कर लिया एक दुआ में, परवरदिगार हमें बारिश चाहिए। ये अल्लाह की रहमत के हम इन नीड हैं, रहमत परवरदिगार के बगैर ज़िंदगी सर्वाइव नहीं हो सकती। हमें बारिश चाहिए, कैसी बारिश चाहिए, इमाम ने दुआ में कहा है, ऐसी बारिश के जिसके नतीजे में हमारे घर बर्बाद ना हो, ऐसी बारिश के जिसके नतीजे में हमारे क्रॉप्स बर्बाद ना हो, ऐसी बारिश के जिसके नतीजे में लोगों को परेशानियां ना हो, ऐसी बारिश जिसके नतीजे में फूल खिलें और लोगों के चेहरों पर ताजगी आ जाए, ऐसी बारिश जिससे इंसान को अनाज मिले, ऐसी बारिश जिसके ज़रिए से खुशहाली और लोगों के दरमियान और हैप्पीनेस को फैलता हुआ लोग देखें। एक दुआ को तकरार करें, दोहराएँ अपने घरों में, ये चौथे इमाम की दुआ, दुआ नंबर 19 हम सहीफ़े सज्जादिया। यकीन रखिएगा हमारी दुआएं बड़ी कारगर होती हैं, खुसूसी तौर पर नमाज जुमा में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार जो तू हमसे इम्तिहान लेना चाहता है वो इम्तिहान हमारी ताकत के मुताबिक हो, परवरदिगार उस इम्तिहान में हमें कामयाबी अता फरमा, हमारे दिलों को आमादा कर कि हम खुद की और दूसरों की अपनी ज़िंदगी में मदद कर सकें इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سيدا شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم

इस प्रोग्राम में अपने अजीज भाइयों इस्लामी जम्हूरिया ईरान के पुलिस और इंतजामी अमले की खिदमत में हैं, जो अपनी मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ लाए। हम वाकई बहुत खुश हैं कि आप सब इस महफिल में मौजूद हैं। हमें आप पर फख्र है। गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात, आप पब्लिक की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। जो भी इश्क और खलूस से लोगों की खिदमत करता है, यकीनन अल्लाह के नज़दीक माजूर है। जोरदार तालियों की ये दरख्वास्त है। और अब पेश खिदमत है नौजवान कारी और हाफिज़े कुल कुरान, एक कुरानी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मसूद सयाफ़ज़ादे का इस्तकबाल कीजिए।

0: दिन।
1: वो जो पैमाने के नीचे बच जाता है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। जानते हैं आप हजरत, इमाम जमाना की सिफात में से सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली सिफत अदल है, और उस अदल का सबसे नुमाया पहलू इक्तसादी अदल है। जब इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे तो सबसे पहले यही इंसाफ, यही माआशी अदल कायम करेंगे। बकियतुल्लाह खैरुल्लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वमा अना अलैकुम बिहफीज।

शुआइब ने इनकार नहीं किया, फरमाया हाँ, नमाज ने तुमसे कहा है कि हम अपने माल में अपनी मर्जी से तसर्रुफ न करें, अपने आबा व अजदाद की सुन्नत पर न चल सकें। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, तुम तो समझदार इंसान थे, नमाज ने तुमको ये सब सिखाया है।

आओ ये ज़मीन ले लो, महंगे इलाके में ले लो, हमारे साथ रहो, हमारे लिए काम करो, तुम अच्छी बातें कर लेते हो, तबलीग कर लेते हो, बातचीत का सलीका आता है, लो ये महंगी ज़मीन ले लो और हमारे साथ आ जाओ। मगर शुएब ने जवाब दिया, वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, जिस चीज़ से मैं तुम्हें रोक रहा हूँ वही खुद करूँ, हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं इस्लाह की कोशिश करूंगा, ना ये कि पूरी दुनिया को सुधार दूंगा, मगर मैं अपना फरीजा जरूर निभाऊंगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कल तो वा इलैहि उनीब, तौफीक देने वाला भी अल्लाह है।

0: حكيم وما أنت علينا بعزيز.
1: ये तो ऐसे लोग नहीं है कि तुम कहो लरजमनाक तो फौरन आकर बोले चलो बात कर लेते हैं, चलो गुफ्तगू कर लेते हैं, चलो समझौता कर लेते हैं. लव तुधिनु फयुधेनून वद्दू लव तुधिनु फयुधेनून. पैगंबर वो दरअसल ये चाहते हैं कि तुम नर्म पड़ जाओ, तुम झुक जाओ, उनकी बात मान लो. हरगिज वो चाहते हैं कि तुम आंखें बंद करके गुजर जाओ, कि तुमने कुछ देखा ही नहीं, बस समझौता कर लो सब ठीक. लेकिन समझौता न करना, मजबूती से खड़े रहना. लिहाजा शुएब ने इक्तदार से कहा वया कौम अमलू अला मकानतकुम इन्नी आमिल. तुम अपनी जगह डटे रहो, मैं भी अपनी जगह डटा रहूंगा. सौफा तअलमूना मन यातीही.

0: जहां भी हम हैं, इक्तसादी करप्शन ऐसी चीज है कि अगर ये कल्चर बन जाए, आदत हो जाए, अगर ये सिस्टमेटिक हो जाए, अगर बैंक रिबा लेने लगे और ये फिर ये सिस्टम में सरायत कर जाए, तो फिर अल्लाह उस कौम को नीस्तो नाबूद कर देता है, अल्लाह उस कौम को बर्बाद कर देता है। सलावात।
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

incomplete, probably not acceptable. इसलिए कि ये दोनों चीजें बहुत मिली हुई हैं, रोजा और ज़कात फितर. और उस हदीस में फिर मासूम फरमाते हैं कि इसी तरह से नमाज को देखो और मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलावात को देखो. जिस तरह से ज़कातुल फितर जो है रोजे की रूह है, इसी तरह से सलावात बर मोहम्मद जो है वो नमाज की रूह है. और सलावात बर मोहम्मद जो है कभी भी कंप्लीट नहीं है जब तक मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद को शामिल न करे. और ये जो रिलेशनशिप है नमाज में और सलावात में मोहम्मद आले मोहम्मद पे, बहुत इंटरेस्टिंग है. क्या आप देखें, पूरे आलम इस्लाम में अहले बैत को दबाने की कोशिश की गई सदियों तक, लेकिन अभी भी नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद को नहीं हटा सके. और ये दर हकीकत एक मौजजा है कि हम मुसलमानों ने बहुत कोशिश की कि हम मोहम्मद की बात करेंगे, आले मोहम्मद का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जब नमाज में आते हो खुदावंद आलम तुम्हें मजबूर कर देता है कि नमाज उसी तरह से पढ़ो जिस तरह से रसूल पढ़ते थे. हुक्म मैंने दिया है, तरीका मोहम्मद से सीखो. और मोहम्मद के नमाज में सलावात भी है और सलावात में मोहम्मद मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ सलावात है. इसीलिए इमाम शाफी ने यही कहा था ना कि आले मोहम्मद आपकी मोहब्बत जो है ये फर्ज है कुरान में. क्यों? इसलिए कि वो शख्स मल्लम युसल्ली अलैकुम, जो आप पर सलावात न पढ़े नमाज में, ला सलात लहू, उसकी नमाज नमाज नहीं है. तो इमाम शाफी ने भी इस कसीदे में दर हकीकत एक लिहाज से यही बताया है कि नमाज की रूह जो है सलावात बर मोहम्मद आले मोहम्मद है. अगर आप मोहम्मद आले मोहम्मद का जिक्र नमाज में न करें तो फिर आपकी नमाज जो है नमाज नहीं है. आशूर के दिन आप देखें मुसलमानों के इन्हितात और उनकी करप्शन का लेवल आप देखें. ये हजरात जो आजकल बहुत कहते हैं कि ओ हम लोग जो हैं तौहीदी मुसलमान हैं, माशाल्लाह हमें मोहम्मद आले मोहम्मद से सरोकार नहीं है, बस हमें खुदा का मानते हैं. भाई मोहम्मद आले मोहम्मद के मानने वाले भी एक ही खुदा को मानते हैं, लेकिन खुदा ये चाहता है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो उसमें मोहम्मद आले मोहम्मद का जिक्र जरूर करना. आशूर के दिन आप देखें अबू समामे सैदावी ने जब इमाम से ख्वाहिश जाहिर की, और कमाल है ये शहदाए करबला, इनकी ख्वाहिशात को आप देखें कि वो जो हैं जंग के आलम में हैं, उनके पास ऑप्शन है, वो फुरादा नमाज खौफ पढ़ सकते हैं दो रकात में बजाय चार रकात के, चाहे वो वहाँ 10 दिन भी रहे हों क्यों ना रहे हों. लेकिन नहीं, ख्वाहिश क्या थी? मौला के पास आते हैं कि इमाम हमारी तमन्ना यह है कि एक बार और आपके पीछे आपके इक्तदा में नमाज पढ़े जमात. और इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अबू समामा के लिए दुआ खैर की कि खुदावंदा तुझे उन लोगों में से करार दे कि जिसने नमाज को याद रखा है. और उस वक्त इमाम ने अपने असहाब से कहा कि इन यजीदी लश्कर से कहो कि जवाल का वक्त हो चुका है, जंग को रोक दिया जाए, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन कम से कम नमाज के लिए जंग रोक दिया जाए. इन लाइनों ने जंग रोकी तो नहीं, बल्कि सामने जो एक अफसर था उनका हसीन बिन नमीर के नाम से खबीस, वो एक जुमला कहता है. इसी से हम कहते हैं कि ये वो हैं कि जिनकी नमाज में वो रूह नमाज नहीं थी अगर नमाज पढ़ते थे. वो कहता है हुसैन इब्ने अली से कि हुसैन आप नमाज पढ़ के क्या करेंगे, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, नऊज़ु बिल्लाह. अरे बदबख्त, वो नमाज जिसमें मोहम्मद आले मोहम्मद का जिक्र ना हो,

और आले मोहम्मद के डेफिनेशन में तमाम मुसलमान मुत्तफिक हैं कि हुसैन शामिल हैं, उनके बारे में तुमने ये तौहीन की है। हबीब इब्ने मजाहिर से अपने इमाम और दोस्त की ये तौहीन बर्दाश्त न हुई। हबीब इब्ने मजाहिर सबसे ज़ईफ़ उल-उम्र मुजाहिद थे करबला के, तलवार निकालते हैं, हसीन बिन नमीर पर हमला करते हैं, घोड़े से गिरा देते हैं, लेकिन उसके सिपाही जल्दी आते हैं, उसको बचा के निकाले ले जाते हैं, लेकिन हबीब से ये तौहीन अपने इमाम की बर्दाश्त न हुई। जंग को जारी रखते हैं, लेकिन ये करबला का ज़ईफ मुजाहिद कब तक लड़ता? लड़ते लड़ते जब जख्मी हो जाते हैं, ज़मीन करबला पर बैठ जाते हैं, जब बैठते हैं एक मलून आता है और पुश से नेज़े का वार इस तरह से करता है कि सीने से जो है नेज़े की अनी निकल आती है सामने। अज़ादारों ने हुसैन हबीब की रूह जो है मला आला की तरफ परवाज कर जाती है। इन कूफी बदबख्तों में जिन लोगों ने हमला किया था वो आगे बढ़ते हैं, जनाब हबीब के सर को तन से जुदा करते हैं और कातिल जो है हबीब के सर को घोड़े की गर्दन में बांध देता है। रवायात में शेख अब्बास कुम्मी लिखते हैं कि जब ये काफिला कूफा पहुंचा है, इब्ने ज़ियाद में ये के दरबार में ये लोग गए हैं, तो ये कातिल भी उसी तरह से जाता है, लेकिन उसने गौर किया कि जब से हम कूफा में वारिद हुआ हैं, एक नौजवान जो है मेरे साथ साथ चल रहा है और दरबार में भी साथ साथ खड़ा था। जब दरबार से वो बाहर निकलता है तो वो कातिल जो है नौजवान से पूछता है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उस वक्त उस जवान ने कहा, मेरा नाम कासिम बिन हबीब है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है कि मेरे बाबा का सर जो है तेरे घोड़े की गर्दन में हो। खुदारा मुझे दे दो ताकि हम जाके दफन कर दें। बस कासिम बिन हबीब से इतना कहेंगे, ए कासिम, तुम्हारे लिए सिर्फ एक सर का मामला था, सर उठा के आबिद बीमार की तरफ देखो, वहां बाप का सर है, भाइयों का सर है, चचाओं का सर है, 18 बनु हाशिम के सर की तकलीफ अज़ैनुल आबिदीन में बर्दाश्त की है। अला लानतुल्लाह अलल क़ौम ज़ालिमीन سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدا وند اس قلی لباس قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدا وند جہاں جہاں مسلمان ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان میں اتحاد اور امن کی فضا پیدا کر۔ خدا وند جہاں شیعان علی ہیں، خدا وند ان کو تکفیری افواج کی تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ تکفیری افواج اور جتنے ان کے ریزورسز ہیں خداوندہ ان کو نیست و نابود فرما۔ پورے عالم بشر کو خداوندہ کرونا وائرس کی منفی اثرات سے محفوظ رکھ۔ ہمارے امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ دنیا میں امن و امان قائم ہو سکے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات